0: है।
1: अगर दिया ये क्रांतिकार
0: अकेले वाले ने सुला लांडा गावांडा सुला बांगांडा सुला से
1: सुला को कॉफी बाँचा लड़ी बेसी है मैं सीजो डार्जो जी है
2: अपन डर जाओगे।